आकाशवाणी इम्फाल नसी थवानी कुन्मा पन्नीपान बा सगोल सेन नुमेद सकाब्दली सिंह मग चमापन निफुनिपान सेप्टेम्बर की तांग तरा इं लिसिंग अनिगा कुंतरुक अयुक की पुंग मंगा मखाई ता की बगलुई नना कंगना चैनल संदोक पहुंजरी संदोक चरीबा मीटर चहुंग निफुदास्मिक अमा किलोहर्स चनिपान गमर फुनी थोईनी ख्वाई पुम नमक पु इकाई खुम नबगलुई नना तरान ओक्चरी

ताइबंग कुम्हाई सानाबा लागपनी कुम्हाई नुंगाइरिंगाई खल्लुदे हनगनी हाइबा अवाबगी मगुन न कनबना नुंगाइबगी मगुन हेनबनी नुंगाइरंबा वारंबा पुंबा ताइबंग पंथुंग फमदी अमतनी।

खोंजेल नाचोम ताबिरे अदोम ताबिरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल नी हौजिक अयुकी पुंग तरेट मखाई तारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी।

0: आकाशवाणी इंफाल गांगोम किरण पाव पाजरी अहमद मोर पाव मसा मथन सिजबगी थौंग थिंग मालेमगी नुमित थौरम ngasi मफम कयाद पांगथोकनारी मणिपुरदा बीजेपी की फिवम हेन फगतहनबगी मतांगदा दोल असिगी प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदार देवी ना सभापति ओइबो मिफम मम पांगथोकरे अमसुंग भारत अमसुंग श्रीलंका की मरक्त तेंगबांग पिनब हेंगतहनबा यानचे अम सही तौनखरे मसा मथंत सिजबगी थौंग थिंग मालेमगी नुमित थौरम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे लिसिंग अनि कुंतरुक ngasi मालेमगी मफुम कयाद पांगथोकनारी कुमसी सही की पालन थौरम असिगी हिरमदी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन हाइबसिनी मणिपुर असु तोंगान तोंगान मफुम सिंगदा थौरम सिंग पांगथोकनब सेम सानारी मफुंगैबो थौरम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टोरेट ने पुण्य सिंधु लम्फेलफात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हेरिटेज होल्ड पांगथोकनी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मरी लेनना हौजिक यहाँ की ममांगद आकाशवाणी इंफाल के वरी सानबद शेयर एंड केयर की फाउंडर मसुंग सक्नायरब साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आर के लेनिन असुम हाई
1: ममल यामलब मियोबगी पुंसी सही अमदा मालेमगी मफुम अमदा नत्रगा अमदा मियोय लाख निपालोम नम अतोमत मसा मथंत पिखम नहनकी सुसाइड हाइबसिदी मतम साना खंगौरगदी मतम साना मतेंग पियौरगदी कनबे याबा दुगम थौंग अमनी हाइब खंगनरगले अदुना खै मसिदगी हौना लोसिनदुना थंबगी महुत्ता मसि मयाम खनरगा कननबगी रोमदा खोंग थंगजिमिनरसी अखोन खजिम कानब वफमदी दंडी तौगदब नत्रग थाथिधब नाते मखोबू मतें पाबीरगा खोमीनब वरी वताई सानरगा कनब याब दुगम थौंगी खनब खब हौरसी
0: राज्यसभा की एम पीसु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयूम सरदार देवी ना सभापति ओइदुना दोल असिगी राज्य मसुंग जिला थाकी थौ पुबसिंगी मिफम मंगरांग पांगथोकरे मिफम अदुदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान मसुंग गृहमंत्री गोविंद दास कोंथोकजम याउना दोल असिगी मकोक थोंगब थौ पुब मियोय कया सरुक याकी राज्य असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगद लैरिबा बीजेपी की कार्यकर्ता सिंगी मरक्ता अमगमग पाउ फाउनदुना मतेंग पांगनदुना दोल असिगी थबक थौरम सिंग हेन पांगथोक पुंगमनबगी मतांगद मिफम अदुना खनकी मणिपुर मियाम की तंगाई फदब सिंग खंगदोक्तुना मियाम की दमक हेन थबक तौब गम दोल ओहिननबसु मिफम अदुना खनकी एमएलए थोक्सोम राजेश श्याम हाय ngarang हैरोक हायर सेकेंडरी स्कूल चतुना ओजा सिंग महिरोय सिंग ममा मापा सिंग उनदुन वारी सानक्रे उनबदुदा महिरोय सिंग ओजा सिंग माइकेदगी पुखलक वाफम कया श्री राजेश श्याम ताकी तुंद एमएलए ना हायर सेकेंडरी स्कूल असिगी फिवम हेन फगत अनब मसुंग मही मसिंग तंबगी थाक हेन वांकत अनब पाइकतप याब थबक सिंग सोइदन पहित कनी हाइना थाजब पीकी श्री राधेश श्याम ना हायर सेकेंडरी अदुगी अकोइबदसु सत्तुने यंगसिनकी बिष्णुपुर जिला की मनुंग चनलैबा थौनाउजम अमसुंग संजनबमदा जल जीवन मिशन की मखाद पाइकलेबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंग ngarang एमएलए थौनाउजम बसंत कुमार ने सत्तुने यंगसिनक्रे खोंचेत अदुदा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मकोक थोंब ऑफिसर सिंग सरुक याकी वाटर सप्लाई स्कीम सिंग अदुदा अपीब मतम की मनुंग निंथीना क्वालिटी कंट्रोल तौदुना सेंब लोशिनबसु श्री बसंत कुमार ना ऑफिसर सिंग अदुदा पौताक पीकी सोंगथाम विक्रम मिसीबु माइकै कयादगी लेप्तन यानिंगदब फोंदोक नरकली मणिपुर गुरखा वेलफेयर यूनियन अमसुंग ऑल मणिपुर गुरखा एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ना मिहात अदुबु यानिंगदब फोंदोक लदुना तोंगान तोंगान बा दाबी मरी

0: किरण।
1: थागचरी गिचंद्र अरोब दमर पाव अमोहना मसा मथन सिजब की थों थिंग मालयम थौरमी मफम क्या पांथोनरी मणिपुर बीजेपी की फिवम हेन फगटनबी दोल असी प्रेसीडेंट अधिकारी मयूम सरदार देवी सभापति मिफम पांथोक्रे भारत श्रीलंका की मरक्त तेंबा पीब हेगटननब यान चे सही तौनख्रे पाव लोजरे।
2: अदम ताबिरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल नी हौजिक ताबिरसी खोयराकपम याइमबी देवी ने सकपन नोट जुगोल रूप प्रार्थना।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक दिल्लीदगी रिलेदा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी सिलोंगदगी रिलेदा अवांग नोंपोक लमदमगी पाव मथंग मथंग ताबिरसी
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पर बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
6: Women, they open their bank accounts.
7: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: Our members of 9 million self-help groups.
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
9: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages, having a population of about 52 lakhs.
13: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kajipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors, and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
12: Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. He said these routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route.
13: Railway ke 7 high density corridors.
14: The 7 high density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to 4 line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled, along with the Delhi to Guwahati corridor.
13: Ye dono diagonals. Fir Delhi se Guwahati.
12: Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the cabinet decision pertaining to three multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife-related tourism, and lower logistics costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India is focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. Highlighting women's financial inclusion, Mr. Goyal noted that India has nearly 300 million women bank account holders and provides collateral-free loans to women seeking to start their own work, including those without a credit history.
6: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't earn anything until then, has now exceeded about 30 million, whose personal income is over 100,000 Indian rupees. And we hope to continue to expand both the number and the amount. We call them Lakhpati Didis. Lakhpati as in a person with 100,000 rupees, and Didi is a sister.
12: Today is the third day of the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the GFF on Tuesday. We have more from a correspondent.
8: On the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai, various sessions on agentic AI, tokenization and quantum technology have been organized. Union Minister Jyotiraditya Sindhia will address a session titled Connect India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. RBI Governor Sanjay Malhotra will address a session titled Shaping the Next Decade of Finance, Technology, Trust and Innovation. SEBI Chairman Tuhin Kant Pandey, former Chairman of UIDAI Nandan Nilekani, SBI Chairman C.S. Shetty are also scheduled to address important sessions during the day. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
12: The Election Commission of India, ECI, has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls in Tripura. Various political parties, including the ruling Bharatiya Janata Party, BJP, demanded it in view of the September 28 village committee elections in the state's tribal areas. With January 1, 2027 as a qualifying date in the state, the SIR exercise, which was earlier scheduled to commence from September 5th, has now been deferred. This is Akashvani giving you the news.
1: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on public at AIR News Alerts.
12: India stepped up its humanitarian assistance to flooded Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu yesterday. Minister of External Affairs MEA said the latest consignment includes National Disaster Response Force NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for the Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. We have more from a correspondent.
15: India's assistance comes as rescue operations continue in areas affected by flash floods in Nepal, including at the Chilimi Tunnel in Rasuwa, where an Indian team is working alongside the Nepal Army in search and rescue operations. According to Nepal's Disaster Management Authority, 13,646 people have been rescued so far in the flood-hit areas, while around 5,132 people remain missing. Among those reported missing are around 2,860 people from Rasuwa and 1,787 7 from Nuwakot. The missing include Nepal Army personnel, Nepal Police and Armed Police Force personnel, government employees, bank and financial institution employees, as well as foreign tourists. India's relief response began shortly after the devastating flash floods in the last week of August. The first Indian relief aircraft arrived in Nepal on August 26, carrying 10 tons of supplies, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and medicines. Yashasvi Kirial for Akashvani News, Delhi.
12: International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. Russia, China and Niger voted against it. The resolution was proposed by the United States, Britain, France and Germany. Referring Iran to the Security Council opens the country to possible sanctions and asset freezes. However, such punitive measures are unlikely because Iran's allies Russia and China are permanent Security Council members and can veto any punitive action. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions, and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gaming as a major risk. India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahe and Uttarakhand during the next 2 days. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 15th of this month. Similar conditions are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow. Hot and humid weather over coastal Andhra Pradesh is likely today. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elena Rybakina of Kazakhstan. In the men's singles quarterfinals, 8th-seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller. Tiafoe defeated fellow American Alex Mitchelson in his quarterfinal match. Both Shelton and Tiafoe are chasing the first Grand Slam final. In the other men's quarterfinals, 28-seed Belgian Alexander Blok is currently playing against unseeded Russian Karen Khachanov, while top-seed Alexander Zverev of Germany will play Dutchman Botik van der Zandschulp today. News just in Philippines, 5 people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
16: Thank you, Abhishek. Defence Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan President in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan President Anuradha Kumarasinghe as saying, "won't allow our soil to be used for anti-India activities." Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says, BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
12: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.

ताबिरे सक्तम मतंगी खोंगलेदा मणिपुरी थिएटर कुंतरेत सुबसरुक अईबा बुद्ध चिंगथाम सैसकपी सोरखाइबम बेबी रानी देवी थौरम लांथोखिबा निंथौजम लेम्बिसना अमदी रायचंद चिंगथाम थौरम पुथोकपा रायचंद चिंगथाम पुथोकपदा तेंबांगबी संगीता नामैराकपम अदोम ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल नी हौजिक चैनल असिदा लैजरी ngai kho ta khisi.

तनौबी साथेक निंगोलगी फाथव ममहंद्रे साथेक अदुना पाखंगी मिहुलगी खोंजेल यांग न थोइना चेन करे तनिक पखोंजेल ना तुम इंदुना नुंशी नुंगोल थमोइदा यनिंग हुलनबंगम्बा

धनबीर नौरेमना सैरेंबा नंग लैन लैनंगासिदी हाइन सैहौब इसै असिना सैसक्प असिकी अनिसुब इसै ओइरनी तमिनसी नंग लैन लैनंगासिदी।

0: tang ka si gi oina gate lan thuk che ba matang se lo shen jari adom ma thorum ta bi ri ba si fm mega har sam hom dasmik manga da sanduk chari ba akashvani imphal gi sangai channel ni
1: सब के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: तोंगान तोंगानबो नुंगायरबो थोरम किया अदोमना आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल दगी लेप्तना ताबिरी नुंगायन ताबियो नसिगी मखाताबो थोरम सिंग लानतोक पिनबो की दमकताई खोई के अनाउंसर लौरेमबम टूरिस्टा सिनचरी
3: लाइसरम बिमोबो थागचरी लोइनना आकाशवाणी इम्फाल की थोरम ताबिरम लिबा मया पुमनमकपु पुंगफमसिदा मुकहन्ना तराम नोकचरी नलुकचरी हौजिक पुंगफमस्ते संदोकचरी रेडियो लीला निंगमद्रबा थमोई की तिंग थाको लीलाइबा राज मणि खुंजाम्बा लीला पुथोपा निंथौजम लोकेंद्रजीत सिंह अमदी पुथोपा दतेंबांगबा सुभाष अथोकपम हौजिक लेजरी रेडियो लीला निंगमद्रबा थमोई की तिंग थाकोल

0: संगीता संगीता
1: ताको मै आई थी कना कना और विनिंग रे उदा कुइरे दा
0: कम दो येने नंगबो
1: नुंगाई री हाई ताये वाई आई दी हाई आई दी से पांचि द पमो आई दी ताको मै से सिंग दा दुम खुंदा लाई ता दुना लाई खबो निंग रे
0: आई उदु द हेक्ता हाइजन मालिको
1: हाइजन बनती ये सेंग बने
0: ए सेंग उ सेंग उ दि फैदा बोरा लि द्रबो
1: आई दी बोरा हाउते

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे। अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी। और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044055 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी, हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

वेस्टर्न म्युजिक की थ्योरम ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हमसे पूर्ण लाक्सरी सकना रिवर्सिंग की वारी दिल हुम हुम करे घबराए गन धम धम करे गरज आए एक बूंदे कभी पानी की मोरी आँखों से बरस आए मियाम न पाम न सकनखीबा रुदारी फिल्म की सैनी गुलजार की मयकनी सैसकपीना लता मंगेशकर ने सुर पानबा म्यूजिक डिरेक्टर ना डॉक्टर भूपेन हजारिका ने ंगसी पुजरकली असम की सैसकबा सैरेंबा सैबानबा फिल्म मेकर भूपेन हजारिका की समलप पुंशीवारी महाक नीलकांता हजारिका शांति प्रिया हजारिका की मसा अलनी महाक असम की मनु हंजिन ब्रह्मपुत्र तुरेल तोरबान ताब सदिया खुगंगा लिंग चमापन कुंग तरुक सेप्टेंबर की तंग निपान पोखे अपोपी शांति प्रिया असम की अरीब सैसक नौसुम इसई खुनुंग इसई मसक खंगी महाकु इसई लमजिंगी मपा की सिंफम की हेन साफगद मफम थीबद युम तुन होंगी लिंग चमापन कुंथा मंगा तेजपुर लाखी मसा की सही तरा सूरे मफम की अनुब मयोन ठेंगी ममा तंबीब अरीब असामीस की सैसक युम लाइसोल इसई बोर्ड गीत लिंग चमापन कुंथा तरुक पब्लिक फंक्शन सकी निमित असम की सकनाब सैरेंब लीलाब असम की अहब फिल्म मेकर ज्योति प्रसाद अगरवाल सकनाब आर्टिस्ट कवि विष्णु प्रसाद राभाग उठेंगी मागी सैसकू मसक खी मकई अनी लमजिंग मखाद कोलकाता पुबीदुना लिंग चमापन कुंथा तरुक इसई सेलोना कंपनी की औररा स्टूडियो अहब रेकॉर्ड तौबी लिंग चमापन कुंथा मापन मसा की सही तरह निथ सूब अगरवाल की फिल्म इंद्र मालती इसई अनी हाबी मसा की सही तरह मरी सूरप इसई की लमसीद मरोमदोम लेपजनब की इनोट लाखी मसान इजब मसान सूर पाजब इसई फोंगी अग्नि जुगार फिरिंगा थी माय साब की मरीद मैरिक इसई मियाम पानी महाक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिंग चमापन निफु तरुक एम ए लोरब ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी थब तौरमी अब लिंग चमापन निफुमापन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फंगदुना न्यूयॉर्क चत्की लिंग चमापन याखनीद पी आई जी फंगी न्यूयॉर्क लेरीद मसक नाइब सिविल राइट एक्टिविस्ट पॉल रॉबसन ठेंगी पॉल की वाखलों माने यामने पामजेखी कायबर्ता हरी बहन्तब जात के कांगलोप ओइरुबना महाकने नहा ओइरिंगेदा यामने नुक्सीजेखीबी अवांग बथा की ब्राह्मण निंगोल अमकाइनेखी मसिने मरम ओइदुना महाक की इसै अयामबा जात बिजात खाइतबा पुन्ने नुक्सी चानना हिंगमिनेबा हाइबसिदा युम्फम ओइ महाकने न्यूयॉर्क ते लेरिंगेदा प्रियामबा दे थेंगनदुना लिसिंग मगसमा पन्याखै दे लुहोंखी मसा अमन लेरेब मतुंग लिंग चमापन हमफु तरुक कायनखी भारत की अवांग नोपो की फोक की नुशीब सूर की मसद हिंदी बंगला सिनेमा पुशिंदुना भारत पुब खब पाखी नोम की आगामी ममानब फिल्म डिरेक्टर कल्पना लाजमी सामना कारबार की मको हेमंत प्रसाद बरुआग सकता खाहलबदी मको अहम पुनुना मियाम पाखीब हिंदी फिल्म सिंह रुदाली एक्पल दमन पुथोखी मसान डिरेक्शन पीब असामीस फिल्म अहमना बेस्ट फीचर फिल्म इन असामीस अहमलक फंगी लिंग चमापन हमद्रा मंगाद नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर फंगी लिंग चमापन हमबुद्रा तरट पद्मश्री लिंग चमापन मरफु तरट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड लिंग चमापन मरफुदरा निथोद दादा साहेब फाल्के अवार्ड लिंग अनीद पद्म भूषण लिंग सूनमरीद संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप लिंग तरनीद पद्म विभूषण लिंग तरमापन भारत रत्न पीदुना इकाय खुमनखी महाक लिंग तरमाथ की नवेंबर की तंग मंगाद ताइबंगपाल थादोखी मतम से मसा के सही मरफु मंगा सूखरे
ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯚꯨꯄꯦꯟ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ꯫

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक घाकी मनुंग दा दिल्ली दिगी रिलेदा दोपहर समाचार फंबीरगनी
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिनोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के

0: तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
3: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
4: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से S सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़

0: से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो सुना जाए कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बैंग बैंग से, शिल्पा राव, शेखर रवजियानी, ऐश किंग की आवाज़ों में। अन्विता दत्त और कुमार की शब्द रचना है और विशाल शेखर का संगीत।

पेश है अमिताभ भट्टाचार्य के बोल में और सचिन जिगर के संगीत में, भेड़िया फिल्म का एक गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

अब सुना जाए लव आजकल फिल्म से अगला गीत दर्शन रावल और अंतरा मित्रा की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

कार्यक्रम में सुना जाए अगला गीत अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म अजर से, रश्मि विरा का लिखा हुआ और अमाल मलिक का संगीत।

ये आखिरी गीत आप सुनेंगे बागी फिल्म से अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाजों में। संजीव चतुर्वेदी की शब्द रचना को संगीत दिया अमाल मलिक ने।

आकाशवाणी इम्फाल इचिचक्रो हुंदा पुंगो फेरबा देकुडे माउ चुसुहु हेना चेतिले चक्र का बेजे नोकल शोए उमाथ फजे बोलो ए उमजिया

0: ye kaya kui de indu phamu adu bu lu na landa lak pyar thakari no yengwe handaki la yese mi ni yam na kinara ba bhail de na background oige nang la yai ba kananum na tangla ini
1: brush ka dong da tham ko se
0: wa kari na pinu si de indu masiki phida se aina aina indin haidra adu bu nong thang leima ngasi gi machu osi bu kana age kok thak ta taru dhuribno oi be indu nang nayam ke be se ai su pam pam di nang gi leima thet ma leidai ne samji de gi ta khiduna lam khang da pan ba man bdo madu phaje
1: ai wa soi ngang ba ta ba lak pa ne ti thabak ki lak pa ni
0: thabak ki my goodness aduk lu bwa do ai bu tahan gano thabak ki wa kari no mata si
1: ngasi kari hai na ki
0: ngasi kari hai na ki ngasi nang bu ai na la u hai ki bro sao no ai kaw re to to sao re do adum na chin pum thok kanu khudong thi ba le ye
1: ngasi na tra interview hai bu hu ji pum kya ta re khang na bra thorang roi ro se ai ya da le ra ma ge du ga ngai kho ain asup yam na wan nang gi thab ama ta phang na bo na ba si bu nang na thau sum sa sa da ba si bu kari gi no
0: ai ne i hai hai da nang na khan bi ba si na ni ne nang bu ai gi lai rem bi hai ri se
1: aswa so to ko se nu ngai ri bra sum ne hing ba se ho ji ti ken ba sti hai rum rang phau lai ba ngam si lag dre आर स्कूल की थबक सिद्धि ने अवोई बा नंगे याम न जाने नंगी एक बखोट बद सु करीम तक आय रोए हे न दुम फगनी तारी ब्राइन हारी से
0: हे मैको मैको इंदु लेंगनो आई नंग बुई के अदुग याम स्टिक होगे तब नती
1: नुगाई खिद्रे नंगा सिमा कोने स्किस तो बयाद रो वहाँ मरक थट बसे फटे गौतम अना है असुमायन हिंग नुंगाइरिब्राइबे
0: इंदु वहां हंगे नंग सौगदरा
1: है खबाई नंगू साब सौसीरा सौनुरा
0: सूम खन सीखी तेरा
1: सीखी वादे मर अगि वाबदे
0: से इंदु से लाओ अगे नाक चंसलो निथी नसीद फमु है वहां है नंग सौदी सौनु नंग सौखीबे अरबनी खी नंगी वाबीर चुमी तौदे फिवम जुगो चादब ताब इंदु करो नंगद असुक वाबीर से कईदौरे सौरब्रो फागी तौनी फागी तौने अच्छा अच्छा इंटरव्यू कईदौने
1: क्या रखोगे अब चलनाब हौरोरा थरान लोरमो चमीनरसीगे
0: लागेद अंगांगने
1: अंगांग खर हेन फै नंग क्या कोई नखु सामना तमीखीगे खी गौतम यंगोय मखोयनने नंबो याम पामिदो
0: मखोय हाइदि
1: आर्ट स्कूल की कांबुदो नहाकने असुमन चंग ओहाबे यानी हाइबसे मखोय थाजेदब जानेबा अदुदा अहिने नंगी एप्लिकेशन नसे पिरुबदम मखोय के हराउख्रे इस नंगी थाबा सिदिने ओइरागुमनिदा मखोयनने नंबो अनथ ओन पामख्रे ओइबा
0: आइबु पामलिदि करिगे
1: इस नंग असोन थोकपनिदा को नंगी नगुन मखोयन मुन्ना मसा खंगे
0: अदु ओइरेबदि इंटरव्यू तौद्रबसु अदुम लबियु हायुदना
1: मदु यादि मी चल भी थोगाब
0: याद नु नंगी ओजा की थब तब इंटरव्यू यौरा
1: इदेना
0: लमहू ममदन अतद ममई कक्थलु है अब इंदु करी इंटरव्यू नो भाव ताब ममदे खबदे लाद्र करो 꼰치형이 강래버 먹다가 킹근이 영도르시보. 실렉션 볼게 빨리 갈란 토뻥 안 벗반디 아이 오이 더보시야이. 인도 난 아이 보고 한 건우다.
1: 아두 부카야 와버 타박노. 나 학당 자뜨는 오늘 루어 부카야 와니.
0: 와이 아이디 와이. 인터뷰 게 빨래도 중봉 안 벗게 비디아 인원들 아이들 없디 감도우니. 아이는 마이 티도 나 할락 보우라가 난 누가이게 들어.
1: 아두 오라게 해도 난 무캉 나버 딱 빨이 소아이.
0: 나 코. 답답코 샤오키 누니 아오이브니 낭나 이보가야 딱비키니 아드분 낭나 이게다막 아숙야미 와비리바 시카리게노 인도
1: 마름 레이티 와바스 마이나르토나 타오비니 아시나 바오쿠 모이베 야라드라
0: 하이나락바 하이나락바 시슈 야암나깐 말라이나니 인도 아이 타박다오라로이 하이나레 하이나레 예수 아이기뿐 시시
1: 타오게 타오 타오로이도 아이 짤레
0: 또또 또 샤오레도 아이부 샤오노 하이르 먹다다 아이코 밤코네 시 샤오노
1: 그러기노 낭나 아이부 속야 모할리바 낭는 타오레다 벌레레바디 하나 하이베 야드라
0: 아이 라레시
1: 그러기다 무다 속야 나이부 셀할리
0: 샤오노 아이 라레
1: 낭나니 아이 나이게 야니다
0: 시 깜깜노 샤오노 아이 라레시 더블게 아이 타박 더블게 답답하고 왕왕는 키시 아도 부카리기 노인도 낭나 이부 짜크리기 랑데 투어닝 리버시 낭 아이부 농시드로
1: 낭아시 미못바 얌나이 아이 순낭기 담막다 칼러로 해나 와삭바시 마싱부 나이람나로 아도 오헥 땅암데 마시 에게 소이바니
0: 아도 보이기 빠콤 비코 낭 아이부 농시드로 그리기 노낭나 아이부 짜크리기 타우리네 불한닝 리바 마두한 하이코
1: Sit napun mata su, nungai bapak melayu ni kau tak? Sit napun maga, di sang thapa ke sumana di?
0: Filosofi, nang nesu ingon de filosofi. Hey, angau bi, cakri di konungi segoli aisyah ki sapam magti nanti dina. Aduh ke segoli aisyah, keram de thami kang lebra. Sayi setara kun sebatawi, matuk te thakal khali, kuai dege anu bu sajik natai. Nungai itu boleh ninglui, apang bi nanggu bi babok na. Munna kalu, segol ya segi punci do nungai rom gadra. Cingna ningai ni.
1: Mioi bapun nama, lipun aman natraga, aman pun bangak ni. Natra badi, sang pun bangam tu duna, angau bagi mar tangin jan batai.
0: Indu, nang wangang bujam hairena. Kenaan hair ba egi lipun lete. Masih bo. Aiyi, itu koi ne ilam bi nupi macam adora. Kadai dek kita mulai jauh sambo way sing aje. Atau, lipun kudu mak kalik ni kain jati. Karino, karino aiyi lipun kang ngapro. Freedom, absolute freedom. Angau bagi kangbu. Kadai kadai dek kita mulai bawa mayam no.
2: Oi bunga. Ibunga kau tamlek terau.
0: Eh, lengsem biro, kari thabaki.
2: Ontok panida, ibunga nesu kari thabaki no ingon dah biri. Nahalgi foto dubu sindok pelu ibira bra, wari dah thongna bersa.
0: Pai bu, pai diri. Indu nang hak tengai ku wari diri. Tadi kido, ay pai bu ngam jadi.
2: Is, kari wanu ni ibunga. Sambat sor nang nabat tawi bu ngam lu dori jala. Ibung on haiba jamani janini thamjaramge nanghan bidabya di haijaraga yamba bu kyara khannalak chukhugi laikba sima khairam drabdi ibung on oigida phibama sikarinu khangde se loibiro ibunga kharthuna loibiro haujik aina pudna chat kharbasu phajana roido
0: hoy hoy loina bu hona bhaibdoni kayani wali samba sordi
2: tarani muktanga irabani ne ibunga matam leitraba putni ne Ibunga bu thajar uba dage astifawa photo yaudan lokat kredo. Loibiro loibiro ibunga karatuna loitokpina batta ubiro. Aduga waamatanga handakki picture shina. Iyamba bu pelhan bangam labadi. Iyamba gishu phajaba. Iyamna phajaba amatang dihe yepidaba yadre.
0: Iyamna phajaba haibji taada mandrashu yagadro.
2: Manchu malhan gadabani. Aduga karadihe na phajan batai. ꯃꯁꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯅꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯕꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯛ ꯃꯥꯟꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯩꯕꯨꯡꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯂꯨ ꯆꯣꯏꯌꯦ ꯐꯣꯇꯣꯕꯨ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣꯈꯣꯏ ꯊꯤꯔꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯕꯨ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯕꯨ ꯐꯖꯔꯕꯗꯤ ꯁꯩꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯇꯕ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯏꯔꯄꯣꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯖꯕ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝ ꯆꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯗꯒꯤ ꯅꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯈꯪꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯣ
2: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯐꯖꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝ ꯆꯅꯤ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯅ ꯃꯔꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯏꯌꯣꯈ꯭ꯔꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ
3: ꯇꯥꯗ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯂꯤ
2: ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯜꯂꯕꯗ ꯇꯔꯥꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕꯗꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
3: ꯑꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯂꯦꯡꯉꯣ ꯂꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ
2: ꯍꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ
3: ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ
3: ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒꯦ
3: ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯛꯈꯤꯒꯦ ꯇꯥꯈꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯂꯩꯈꯣꯅꯦ ꯏꯟꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯅꯤꯗ
1: ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦ

रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है। दिन भर की भाग दौड़ अब थोड़ी सी थम सी गई है और शायद यही वो वक्त है जब हम कुछ पल अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं हूं आज आपका साथी शमीम और आज की इस खूबसूरत रात में हम साथ हैं कुछ अच्छे गीतों के साथ और उन छोटी छोटी उम्मीदों के साथ जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं छुप कर रह जाती हैं। तो जहां भी हैं थोड़ा आराम से बैठिए, दिन भर की चिंताओं को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उनका सामना किस तरीके से करना है ये अक्सर हमारे हाथ में ही होता है। कभी रास्ता आसान होता है तो कभी थोड़ा सा मुश्किल, कभी लोग साथ चलते हैं, कभी कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। लेकिन अकेले चलना हमेशा अकेला नहीं होता, कभी हमारी उम्मीद हमारे साथ होती है, कभी कोई याद और कभी कोई प्यारा सा गीत, ठीक इस गीत की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड, भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2

0: उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दो दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later tonight to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive tomorrow morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi tomorrow. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defence, clean energy, advanced technologies and talent mobility. Union Home Minister Amit Shah today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. They discussed strengthening cooperation in social development, irrigation, cooperatives, natural farming, including millets and solar energy. In a social media post, Mr. Shah said India cherishes its bond with the Aga Khan Development Network, tied by a shared commitment to human development. The minister also reaffirmed shared commitment to advancing these partnerships for sustainable development and the greater good of humanity. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.

0: Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर दैन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4%, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $100 अ बैरल।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से ऊपर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.2% हायर टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन 138 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,903। निफ्टी एडेड 46 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,478। However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
2: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमजोर है, अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं। पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है, और उसका मुख्य कारण देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूंगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ रही हैं, और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़त है, तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफी शेयर्स में हम देख रहे थे काफी गेन्स आ रहे थे, तो नेचुरली जो अंडरलाइन ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मिड कैप में आज वही था।
0: वी आर सीइंग दैट डीआईआईज हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑन द एम्फी डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, वेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय 19 percent. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is this overall sentiment basically on inflation, especially imported inflation, what's going on in the Strait of Hormuz. How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that, you know, India is just waiting for the opportunity really to break out of this. How will you explain what's happening in the market in the short term?
2: So, Arjun, in fact, there are two, I would say, counter trends underlying in the market. One, of course, is a macro trend, which is the global factors, political factors, economic factors, inflation that you are importing via high crude oil prices, higher interest rates. So that is one trend which is overlying in terms of market trends. The other thing is, of course, the internals of the Indian economy. So we see that while all these pressures were there, the Indian economy has continued to do very well. We've grown at a robust 7.8% rate in the in second quarter GDP numbers. We also have seen that investors, domestic investors, they continue to be positive and bullish about the markets. And you mentioned that DIIs have seen inflows of funds, and that is the reason that we find that the domestic investors, investment institutions, they have been doing, they have been supporting the market because they have fund flows from investors. My guess is that when the macro situation, the international situation, it stabilizes, we will see Indian markets outperform.
0: FIIs returning to the market, is that possible in the short to medium term, especially with the bond yields in the US, because hedge funds will look at where the returns are maximum, especially in their own currency. They don't have to go through the process of buying rupees to invest in our market and then once again buy dollars really to convert it and then reinvest it back into the markets. Where do you see the FIIs, FPIs returning really?
2: So, traditionally, if U.S. interest rates start going up, like they're happening right now, if you look at the 10-year bond yield in USA, it is about 4.85%. Usually, if that happens, then FIIs would pull money out of emerging markets and take that money back to America because they would like to invest in American
0: arbitrage.
2: The interest rates are there. However, if you look at what has happened in India vis-a-vis the FCNRB deposits, then you will realize that foreigners still have a lot of faith in the Indian economy. We have seen approximately $125, $127 billion flow into Indian economy via the FCNRB route. So I think that while FIIs may be tempted to take out money in the short term, in the longer term, they want to put money in India because that is where the growth opportunities are. So my guess is that, again, I circle back to the same point. The moment we find that global macro situation improves or it stabilizes, I think we will see FIIs come back to India, which may be hopefully not towards the end of this year.
0: So we're talking about interest rates being offered by FCNR deposits versus what the treasuries in the US offer to investors there on government debt itself. But there is clearly a difference on which paper inspires more confidence for hedge funds.
2: So, see, we cannot compare FCNRB flows with 10-year bond yields, because FCNRB facility was available only to NRIs. It wasn't available to, let's say, foreign investors or foreign institutions. Whereas any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at these numbers only as a pointer to the confidence in the Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So, clearly, I think, while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
1: Puneet, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा IT sectors की ओर, IT sector की ओर ले जाना चाहूँगा कि इस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह की approach रखनी चाहिए IT sector के प्रति, और खासतौर पे ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि large cap की स्थिति अलग है, mid cap और small cap की स्थिति अलग है, तो कैसे एक relation बना सकते हैं तीनों में?
2: निखिल, देखिए, IT sector के की जो contribution है Indian economy में, वो काफी significant रहा है. In terms of exports, in terms of corporate earnings, in terms of जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में, वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है, कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा, और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देखें एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
2: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी
1: जी.
2: तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी, और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड से पैसा डाल रहे हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो, तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज, यही हमारा स्ट्रेंथ रही।
1: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, बहुत एक अलग चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है। पर जैसा हमने अभी यहां पर हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं। पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली अट्रैक्ट।
1: इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
2: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
0: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड $4,400 per troy ounce when it had touched 4,000. Yet there's a great deal of interest in ETF regarding gold, but debt funds, there is an outflow in it, an inflow in ETF gold. Why is that the case? Because there is so much money now also going into treasuries, for instance. We mentioned about that earlier. Why is it that debt funds are seeing an outflow?
2: So debt funds usually see a very volatile flow, because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September we have advanced tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advanced tax payments, and therefore the flows in debt funds were lower.
0: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer data responsibly. He emphasized that technology has made banking faster, cheaper and more secure, and noted that India is now the world's third largest fintech ecosystem. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey stressed that technological innovation should not compromise investor protection, market integrity and financial stability.
3: Our security markets has grown rapidly and technology has been central to that growth. Digital onboarding, electronic payments, robust clearing and settlement, and the ability to trace transactions to the ultimate investor have made participation wider and more secure. But as markets become larger, faster, and more interconnected, regulatory risk also changes. A vulnerability in one part of the ecosystem can travel much faster. This calls for resilient infrastructure and a regulatory approach that can identify such risks.
0: So when we talk about fintech companies, NBFCs, banking sector, today, for instance, BankEx actually went up. Their business is booming really, because capital and finance is a very important requirement in people's everyday lives, including the operations of companies. Fiduciary responsibility regarding customer data. How do you see privacy playing a important role here versus using customer data as a means really to approach customers and sell loans?
2: So Arjun, you know, the problem is, of course, there is this lot of intrusion by in the name of financial inclusion. There's also intrusion by financial people who are sellers of products. However, you will realize that trust is the central pillar of any financial system. Whether we have the old system or we have the new fintech-driven system, it is the customer's trust in the institution where they have put their money, which is central to conducting transactions. So while we have this new technology available, which has made things much faster, much better, far more transparent, no doubt about it, the central requirement that it continues to be trustworthy, people have faith where their money is safe, and there are no instances of fraud or money being lost through these new technology tools, I think Therefore, this kind of question is very important. So while we advance on fintech front, we need to be careful about regulation. We need to be careful about what is the safety of people's money in the system.
0: Let's move on to the crude oil market now. Global crude oil prices surge around 4% today, with Brent crude remaining above $100 a barrel. Traders brace for deeper supply disruptions after Iran and the US launched their largest attacks on shipping since the conflict began. By the time of the latest report, Brent crude was trading 4% up at $105.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.3% higher at $100.18 per barrel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump yesterday predicted that the war with Iran would end immediately after the U.S. midterm elections in November, adding that oil prices would fall sharply once elections are over. How optimistic are you about this latest projection by U.S. President Donald Trump regarding the midterm elections? Because right now, Iran may attack a carrier of the U.S. and the U.S. is then attacking Iran's oil refineries. It seems to have taken a very ugly turn now, especially when you're talking about crude oil and its extraction from the earth, refining of it, the actual business of crude itself.
2: So, Arjun, it seems that the entire war in the Middle East has boiled down to control of the oil trade, and Iran of course is interested that the oil trade is disrupted, and if the oil prices go up, then it increases pressure on the US to wind down its campaign. America has been claiming that they will bring the oil prices down, they'll bring inflation down. They haven't succeeded so far. As you have just read out, Brent crude prices are once again at $105 per barrel level. It is a matter of great concern for India, because India, of course, is the world's second largest importer of crude oil. And a huge amount of external resources are now committed to importing energy for us in terms of crude oil, in terms of LPG, LNG. We import this whole gamut of energy products.
0: So, and sulfur as well for fertilizers.
2: Sulfur for fertilizers. And in fact, and many of the products which are linked to crude oil as an input. So I think it's a matter of great concern for us. I hope, it's very difficult to predict what will happen, because this is such a volatile situation. Nobody can predict what will happen tomorrow morning. But I hope that oil prices come down. $105 is very difficult for India. And I think we are seeing the impact of that in terms of inflation.
0: In more news, Chinese President Xi Jinping will visit India this week to attend BRICS summit in New Delhi. Chinese Foreign Ministry today announced that at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Xi will attend the 18th BRICS summit from the 12th to the 13th of this month. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia, and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. It's a fully loaded story because, you know, you have a border dispute with China. They have been partnering Pakistan in their geopolitics against India. India is buying oil from Russia at a discount, which is advantageous to India, and that's been opposed by the US. And Prime Minister Modi has been pleaded by global leaders that please mediate the Russia-Ukraine war. How do you see the BRICS summit here in India?
2: So BRICS summit in India really comes at an extremely important point, because this, like you said, I mean, this story has so many subtexts, so many things that you can read between the lines, because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We've had very long-standing border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time, being held in India, and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
1: Or Asia, Europe, Bazaar, Parazadal. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज 0.4% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपनी थोड़ा सा बढ़ करके दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से। और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा?
2: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है, वो अब 3% के आसपास करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है। ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक कई डिकेड्स तक ये ऊपर नहीं गई और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। कारण यह है कि जापान से काफी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब्ड होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी, जापान अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा और भारत पे भी असर पड़ेगा। तो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली।
0: एंड इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%, बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
2: Absolutely, Arjun. I think that's the elephant in the room really is the inflation and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
0: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं?
2: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा, आने वाला सप्ताह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद निखिल।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बारह बजकर 11 मिनट और 31 सेकेंड जी हाँ हो चुके हैं। शहर की रफ्तार धीरे पड़ने लगी है, लेकिन शायद ऐसे में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अभी भी जाग रहे हैं, किसी की याद के साथ, किसी के ख्यालों के साथ, या शायद अपनों किसी अपनों के इंतजार में। लेकिन इस बीच मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ निशिगंधा, रात के इन खामोश पलों में आपका साथी, कुछ मीठी यादों के साथ, कुछ अनकही बातों के नाम और कुछ गीत संगीत एहसास के नाम हम आज आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कुछ ख्याल ऐसे होते हैं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें रोशनी में कह पाना शायद मुश्किल होता है। तो चलिए दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और सुनवाते हैं आपको ऐसे ही गीत, ऐसे नगमे जिन्हें सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

किसी की खूबसूरती की तारीफ करना आसान है, लेकिन जब कोई दिल को इतना अच्छा लगने लगे कि शब्द ही कम पड़ जाएं, तब बात कुछ और होती है। तो चलिए रात की इस खामोशी में उसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारा दिन गुजर जाने के बाद जब ये रात का खामोश पहर आता है, जहां शोर कम होता है, एहसास ज्यादा सुनाई देते हैं, ऐसे में कोई पुराना गीत यादों को फिर से जगा देता है, दिल को एक मीठे सुकून के साथ भर देता है।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात की खामोशी में कुछ यादें और करीब लगने लगती हैं। कोई चेहरा, कोई मुलाकात, उससे जुड़ी कहानी याद आने लगती है।

मोहब्बत जब दिल पर दस्तक देती है तो इंसान थोड़ा दीवाना थोड़ा मस्ताना हो ही जाता है। किसी की मुस्कान, किसी की बातें, किसी की एक झलक दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी होती हैं।

कभी कभी प्यार में रूठना भी अच्छा लगता है और मनाना भी। और जब सामने वाला प्यार से कहे कि अच्छा जी अब मान भी जाइए, तो भला ये दिल कितनी देर तक नाराज रह सकता है।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत

नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। सैफ अली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात का ये खूबसूरत पहर, साथ में कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाए और पुरानी यादों को जगा दें। तो दोस्त, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका। कार्यक्रम है गीत सुहाने। अगले कुछ पलों तक संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में इस याद और खूबसूरत एहसासों के नाम हम और आप साथ रहेंगे, सुनेंगे गीत, मैं सुनवाऊंगी आपको। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं गीत सुहाने का आगाज। हम और आप मिलकर सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत।

मोहब्बत में थोड़ा नटखटपन हो, थोड़ी शरारत हो और आंखों में काजल का जादू, तो बात ही कुछ और होती है। रात के इस खूबसूरत माहौल में याद आ गया ना वो सदाबहार अंदाज जिसमें प्यार भी है और मीठी छेड़छाड़ भी। तो चलिए सुनते हैं एक बेहद प्यारा सा नगमा, फिल्म है किस्मत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है कश्मीर की गली, रफी साहब की आवाज में।

कुछ गीतों में आज भी वो मासूम सी नटखट अदाएं, पुराने जमाने का वो एक जज्बा नजर आता है और आज भी वो गीत कहीं ना कहीं ताजगी भरे महसूस होते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है संघर्ष।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

कभी कभी किसी का इंतजार भी कितना प्यारा होता है। शिकायत बस इतनी होती है कि उन्होंने बुलाया नहीं, और दिल फिर भी उन्हीं की राह देखता रहता है। इसी नटखट शिकायत और प्यार भरे अंदाज के साथ चलिए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिसमें शरारत भी होती है और मोहब्बत भी, बस एक नजर पड़े और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं।

इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और आबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।

कल्पना का पोत आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात सुरमई है, हवाओं में खामोशी, और दिल ऐसे में किसी खास को याद कर रहा है। और ऐसे में जब कोई मीठी सी धुन कानों से निकलकर दिल तक पहुंचती है, तो दिल बस यही पूछता है कि आखिर ये एहसास क्या है, क्या वाकई में यही प्यार है।

रात की खामोशी में जब किसी की यादें आंखों के सामने ठहर जाएं, तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत, मोहब्बत की एक नजर ही काफी है। तो चलिए रात सुरमई में आप और हम सुनते हैं ये गीत।

रात सुरमई अब सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए शब्द नहीं, बस एक अपना इंसान चाहिए। दिल में छुपी बातें जब होठों तक आ जाएं, तो एहसास और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।

मोहब्बत में सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि किसी की मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ होने का एहसास भी दिल को अपना बना लेता है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत में इससे खूबसूरत इकरार और क्या होगा, दिल भी आपका, धड़कन भी आपकी और ये रात भी आपके ही नाम।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये रात, ये खामोशी और तुमसे ये दूरी, दिल चाहता है कि तुम बस सामने होते और ये रात थोड़ी और हसीन हो जाती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टूडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4थे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं मिलते ही रहेंगे हम।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर जिंदगी नहीं बचती। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, इतना तो याद है मुझे। खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, तो अक्सर उनकी कद्र नहीं होती। आ जाती हैं जब बेचैनियां, आ जाती हैं जब बेचैनियां, तो दिन और रात एक सी फिक्र है होती। जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बेचैनियों में पड़कर इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर अपने दिल में संजोइए। तीन बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:33 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है? सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

दोस्त सारे खत्म हो गए, दोस्त सारे खत्म हो गए, जब से इस मोबाइल से हमने दोस्ती कर ली। ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं, ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं कि ऑफलाइन दोस्ती अब हमने खत्म ही कर ली। पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, तब कोई न था साथ। रखा मोबाइल, निकले पुराने दोस्तों की तलाश में, तब पता चला अब तो उन सब ने भी इसी मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, क्योंकि सभी ने इस मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। 3:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

3:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: विश्व का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अनुरिमा अरुणिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आज उनसे पहली मुलाकात होगी। किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। छोड़िए बेचैनियां सारी, छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। फर्क तो सब हमारी सोच का ही है। इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कीचड़। 4:29 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया, और जो नहीं हुआ तो जैसी भगवान की मर्जी यही है बताता।

अनगिनत प्रयासों के इस दौर में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। हो जाएं जल्दी सफल, इस बात की फिक्र है हर पल होती। होंगे सफल या नहीं, यही कश्मकश दिन रात है रहती। करते हैं आज भी अनगिनत प्रयास, जिसकी कोई गिनती भी नहीं होती। 4:42 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे, सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे, ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है। पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बाकी सभी को अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हर ख्वाब की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए।

0: भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ वर्षा की भावना है। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 18 BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira, Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Lim Nhin Hung are the other heads of the state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं एक प्यार का नगमा है।

सोच समझ कर लीजिए फैसले, सोच समझ कर लीजिए फैसले, पर सिर्फ सोच विचार ही ना कीजिए। समय के हिसाब से चलते रहिए, पर जब समय आएगा तब चलेंगे ये विचार बिल्कुल ना कीजिए। देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए, देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए।